धारो नौ डा पारी जा कंपन सहारो बिछोड़ को बेलई मा बिछोड़ को बेलई माम छंगछंगे बगने खारे कोलम अब तो छोरा कुदने बोलम दिन भरी खेल दो मलाई नहीं भूलो सास परे पछि आमालाई